आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ बिच

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

आप अपनी बाणी विच लिखते हैं कि साच कहो सुनते हो सब दुनिया दे लोगो एक वास्ते नहीं ये उपदेश सारे संसार ये सांझा और भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं साच कहो सुन ले लो सब है सारे सुन लो साच कहो सुन ले।

उस ईश्वर के चरणा नाल प्रेम कीता प्यार कीता चरणा नाल प्रेम कीता प्यार कीता उन्हां नूं ही उस ईश्वर की प्राप्ति हुई है। सत संगत बोलो स...

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर दा नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, वो गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जो थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दी। चौथे प्रमाण विच भाई

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

अंदर क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दिता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत, ओ सरोवर, ओ सोमा हिरदे विच वसाया जावे।

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, वो भज गए ने मेरे कोलों।

राजा ही नहीं कोई रंक भी सेवा कर सकता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक मटका लिया, एक मग लिया, ते आंदे जांदे राहियां नूं पानी पिलाना शुरू कर दिता। भाई जिथे पानी पिलाया गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, अज उथे गुरु नानक प्याओ दा गुरुद्वारा बनिया होया है। संगतां जांदियां हन, प्यासियां जांदियां हन, तृप्त होके आउंदियां हन, मन दियां आशावां लेके जांदियां हन, मनोकामना पूरियां करवा के आउंदियां हन। बाबा नानक जी दी इस प्रेरणा नूं ले करके, इस सेवा नूं सामने रखदे होए भाई साहब भाई गुरुदास जी सारिआं नूं उप

ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके, हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे उथे हर एक दा सन्मान हो सके। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने मानो उथे प्यार नाल प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदिर दे विच टिका देता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने तैस

एक आराध्य हो सच्चा सोए, एक आराध्य हो सच्चा सोए, जंकी शरण सदा सुख होए।

तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बन।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सजके जदों तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वो प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाऊ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जाता है या उसकी अवज्ञा होंदी है। अवज्ञा करने वाले नूं जो सजा होंदी है यह सारा संसार जानता। हुक्म लॉ एंड ऑर्डर नूं कोई ना मने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदा वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है, सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। तो यह हुक्म कलगीधर का सुन के तो वह कहाने वाला कोई गुरु का सिख किसी देह के अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया मिले। ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है, ते बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जनदीय साहब की बख्शिश है भी जो गल करोगे थोड़ी रसना ती आप ही बोल बोल तो सुनाई जाऊगी। ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, ये उत्तम है, ये प्रमाणिक है, ये ना प्रमाणिक है, थोड़ी रसना ते बैठ के तुम समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जो थोड़ी रसना वरत के आप ही तुम कही जाए। जन की बोलने वेले तो गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का करिश्मा है। जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है तो इहदे विच समाया है, इह राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का, आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुणदा नहीं, तो मैं समझदा भी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते, पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा करन बख्शे, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है कि आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं, पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा। जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा नंबेरी आजू ते अरोगता बख्शे, तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा किश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है, असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी विहार लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। You are listening to Seek Radio. वाहिगुरु जी।

अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है। शब्द का मुख भाव रहाओ दी पंक्ति ते हुंदा है।

अंतरजोत राम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने कहानी कहते हैं बीत चुकी घटना या जेड़ी घटना घट रही है उसनू कोई सुनावे कोई कहे अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनू भी सुनते हैं पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी और भगत कबीर साहब कह रहे हैं अंतर जोत राम प्रगासा जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए ता फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है पर एक गल है गुरमुख विरले जानी कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जान

कि परमेश्वर का जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान की अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर का मिलाप गुरु करांदा है और ए

उस गुरमुख का दास है जिसने अपनों जिसने अपने अंदर उगया होया एक कोमल बूटा देखा है। सात संगत ए ब्रह्म ज्ञान की अवस्था का शब्द है जेड़ा इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान

संसार नूं परमेश्वर दा रूप नहीं समझदा। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंदे हन। इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करदा है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवां नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों पता लगदा है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम दी जोत जग जाए। पर ये जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नूं जान लिया है कि ये सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओदी जोत है।

तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नहीं बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं,

उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करते हैं कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख खुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मैनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। तो जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। तो सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है। इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपने सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोची

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया तां इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जिहड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू ले, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, घर ऊपर कढ निस्तारे। गज पत पार उतारे अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघते आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए का जोर चलिया, ते हाथी

फिर भी इनकार कीता। हजूर कहन लगे मेरे गुरु नानक दा वास्ता कीर्तन करन वास्ते चलो। जदों ए गल सुनी तां अगों अहंकार विच मत्ते होया ने आख्या तुहाडा गुरु नानक उस नाल जे साडा भाई मरदाना ना हुंदा ते उहनूं किसने पुछणा सी। साडे करके तुहाडी शोभा है, जे असीं तुहाडे नहीं जावांगे ते तुहानूं कौन पुछेगा। जिस वेले ए गल सुनी गुरु नानक पातशाह जी दी शान दे खिलाफ, हजूर कहन लगे ओए कोड़ियो तुहानूं कोड़ निकलेगा, तुसीं मेरे गुरु नानक दे शान दे विच ऐसे बोल कबोल बोले ने। और उत्थों वापस आ गए, एकदम वापस हो तुरे। जदों आए दरबार विच संगतां उड़ीकदियां पईयां, सोचदियां पईयां शायद गुरु पातशाह जी दा बचन ते मन लैणगे, पर वेखिया उन्होंने हजूर दा बचन भी ना मन्या। गुरु अर्जन देव पातशाह शांत चित मूरत सतगुरु, निर्मलता दे सागर सतगुरु, सहज अवस्था विच आके टिक गए अपने आसन ते। अखां मीटियां होईयां ने, संगतां हुण सोचदियां ने कि हजूर हुण की बचन फरमान लगे ने। उन्हां दे मुखार बिंद वल तक रहीयां ने संगतां। हजूर दे नैण खुले, आखन लगे गुरु की साध संगत ओते अहंकारे गए ने, ओते फिट गए ने, ते गुरु घरों फिटकारे होए उन्हां नूं कोई मूंह ना लगावे। जेड़ा मूंह लगाएगा ओदा मूंह असी काला करांगे। और साध संगत आओ अज मेरे उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी ए बख्शिश झोलियां पसार के सारे ही अज प्राप्त करो। अज तो बाद हर गुरु का सिख, हर गुरसिख माई भाई गुरु का कीर्तन करेगा। हजूर ने कहंदे ने आप सरंदा लिया और अपने मिठ बोले गले तो, मिठास भरे गले तो इलाही नाद गुरबाणी कीर्तन उच्चारण किया। संगतां नू आख्या आओ साध संगत जी रल के कीर्तन करिए। ए है मेरे गुरु दी बख्शिश जो अज हर गुरु का सिख माई भाई बिरद बच्चा गुरु का कीर्तन कर सकता है, बिना किसी भेदभाव तो कीर्तन करता है। शायद जे किधरे गुरु पातशाह ए बख्शिश ना कर दे, सत्ता ते बलवंड नू किधरे अहंकार ना आउंदा, ए बख्शिश आपां सारियां नू कित्थों प्राप्त होनी सी। यही हाल होना सी जिवें हजूर गुरु रामदास पातशाह

अभय पद राज अभिखन अधिक करो ए शब्द भगत नामदेव जी का उचारे होया। इस शब्द दे विच परमेश्वर दे नाम दी वड़ियाई अते भगतां दे नाल उस परमेश्वर दा प्यार इस शब्द तों भगत नामदेव जी सानू ए उपदेश देंदे ने, ऐ इंसान अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेगा इन्ना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेक महापुरुषों का जिक्र नामदेव जी ने किया है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करेंगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राजकुमारन दे नाल भगती भी कमाई जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हैं। नामदेव जी बयान करते ने अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नो अभय पद की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के चक्कर तू रहत हो गए। राज पवीखन अधिक करो, जिस तरह पवीखन नो श्री रामचंद्र ने रावण नु मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत होंदा है उनु सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इनु भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह

कि जिस तरह नाम सिमर के सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए, नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया, भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार हो के

भगत अम्बरीक बारे भाई गुरदास जी भी बयान करते ने अपनी पौड़ी दे विच अम्बरीक मोह वरत है रात पई दुर्बासा आया ए राजा अम्बरीक जिन्हां दे पिता दा नाम ना भाग सी राजा अम्बरीक दा राज मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अम्बरीक राज तां करदा है पर राज भाग दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा। राज भी कर रहा है पर नाल भगती भी। ए भी भगती तो दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तां सुदर्शन चक्र नूं ए हुकम सी तू अम्बरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरदे। राजे अम्बरीक ने वर्त रखे पूजा पाठ कराया यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अम्बरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी नेक बड़ा सी दान पुन करके ए राजा अम्बरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे रस्ते दे विच दुर्बाशा रिखी दा मेल होया। राजे ने दुर्बाशा रिखी नूं नमस्कार कीती पर दुर्बाशा रिखी क्रोधी बड़े सन। कहन लगे राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे। राजा अम्बरीक कहन लगे मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्बाशा रिखी कहन लगे ठीक है राजन। जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अम्रीक मोह व्रत है, अम्रीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अम्रीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ अस उपारना ओठ नावन नदी सुधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना वर्त तोड़ी। अम्रीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद है हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अम्रीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारिया कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारिया की सलाह से भगत अम्रीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। ते दुर्वर्त तोड़िया उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, चरणों दख पेख, चरणों दख लै पेख, ओ सराप देवन नू ताया। जब दुर्भाषा ने देखिया कि इन्हें वर्त तोड़ लिया है, तो वह सराप देने वास्ते तैयार हो गया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई है। कहन लगा राजन तू मैनू भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनों जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, सराप भी देवांगा। राजे ने कहा महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह से मैं वर्त तोड़े है, पर दुर्भाषा ऋषि ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वालां दी उन मसल के सुटिया, जिदे विचों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म कीता उस चड़ेल नू, जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा ए जड़ा राजा अम्रीक है, इन्हें मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्हें वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनू खत्म

दुर्वासा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नूं मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्वासा ऋषि एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म का काम करन लगे। पर ऊ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करदे ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र सी ओ काल रूप होके मौत दा रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारियां तों पहला उस चुड़ेल दी ओ बांह वड्डी जिहदे विच उहने किरपान फड़ी सी, फिर दूसरी बांह वड्डी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड्ड के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के दुआले हो गया। ते दुर्वासा ऋषि जिहड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ये भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हाँ, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। तां की होया, ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, कि ओ ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। ब्राह्मण भन्ना जीओ लै, रखिया ना हंगण देव सुभाया। हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हों भगवान मारे उहनूं फिर कौन बचावे। ए दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजिया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नूं, मेरी जान बचा। पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं। ता दुर्वासा ऋषि शिव लोक नूं चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस दी गल नहीं। दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया, ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाणा हुण मेरे वस दी भी गल नहीं। ता फिर दुर्वासा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकदा। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारियों पासियों इसनू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि के सुदर्शन चक्र मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया, देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने, सारिया ने सिख दे सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्वासा तू भगत नूं बुरा के, तू भगत नूं दुख देना चाहे, इस करके अगर भगत चाहेगा तां ही तू बच सकेगा, नहीं तां तेरा बचना बड़ा औखा।

परमेश्वर, किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाउ निधि ठाकर दई सुदामे त्रू अटल अजूना टरियो, अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी, त्रू भगत ते कृपा की थी, भगत हेत मारियो हरनाकश, भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते हैं केसव परमेश्वर नू के है, सोने केसा वाला परमेश्वर, ये वो जरा परमेश्वर है वो भगतां दे वास है। इस वास्ते तो अज तक वो बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया, राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी, ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुस भी सिमरन करो, दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू